0: प्रोप्राइटर संजय हेगतराज, बाराही ज्वेलर सुनचांदी पसल, न्यू रोड, कालिका मार्ग सोक दमौली तनहुँ।
1: सम्पर्क 9842641633, 9817150898, 9464603385।

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष का 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set box मात्र ₹12 प्रति महीना में. शर्तहरू लागू होने चाहिए. छिटो बने गए Willingo.

World Inco Festivity Offer. अब पाउंड होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बने गई वर्ल्ड इंक।

एम पाइप पाता स्वदेशी तथा विदेशी रंग नेपाटप को पीपीआर सीपीवीसी पीवीसी पाइप फिटिंग डोर फिटिंग किचन डेकोरेशन तथा हार्डवेयर का संपूर्ण सामान पाइन साथ ही टाइल मार्बल ग्रेनाइट चिप्स बाथरूम फिटिंग का आइटम्स हिंदवेयर बाथ सेंस का ग्यारेन्टी धारा पाइन बीपी सप्लायर्स फोन 0565653319 98560 2719।